0: मैं तुहानू इत्थों जान नहीं दे सकदा।
1: ओ भाई, मेरे कोल देखभाल करन लई चार लोग हन, उन्हां नू मेरी सख्त लोड़ है। ओ तां ही अपना पेट भर सकदे ने जे मैं कमाई करदा हां। मेरे बिना तो भुखे मर जाणगे। किरपा करके मैनू जान दिओ।
0: सुनो भाई, गुरु जी सब तो उच्चा हुक्म दिंदे हन। गुरु जी दा इह पत्र कहिंदा है कि तुहानू 6 महीने तक वापस नहीं आउण दित्ता जावे। कि मैनू सच्चे पातशाह दा हुक्म नहीं मनना चाहीदा? तुहानू की लगदा है? अपने दिल नू पुछो अते फिर जवाब दिओ।
1: मैं हां कौन? तुहानू सर्वशक्तिमान गुरु दा हुक्म मनना चाहीदा है।
0: अच्छा, हुण तुहानू समझ आ गई है, जो है सो है। महाराज दा कहना मनना साडे दोहां दे हित विच है। हुण सबर रखो ते 6 महीने आराम करो। अपना चित गुरां दे चरणां विच लाओ।
1: बेशक मैं गुरु जी दा सिमरन करांगा।
2: इस दौरान कुदरत आप ही उस दे परिवार दी देखभाल करन दी प्रक्रिया विच सी। उस रात उन्हां नूं खाण लई कुछ नहीं मिलिया अते उन्हां दे गवांडियां ने पुछिया,
3: तुसीं अज रात दा खाना क्यों नहीं बनाया?
2: अते पत्नी ने जवाब दिता,
4: जेड़ा साडे लई कमांदा सी ओ तां चला गया। सानू नहीं पता कि उस नूं की होया। हुण तां रब ही उस दी हालत जानदा है। साडा खाना जा भुखे रहना हुण तां रब दे हत्थ विच है। जे देण वाला देवे तां असी पकावांगे अते खावांगे, नहीं तां असी वी की कर सकदे आं।
2: गुआंढियां ने सोचिया कि ए ठीक नहीं सी, कि उन्हां कोल भोजन नहीं सी।
3: तुसीं ज्यादा देर भुखे नहीं रहोगे, असी तुहाडी मदद करांगे, असी कुछ प्रबंध करदे हां।
2: अते शुरुआत लई हर परिवार उन्हां लई आटे दा एक थैला लियाया। गुआंढ विच 50 घर सन, इसलिए 50 बोरियां आटा इकट्ठा हो गया। इस तो लंबे समय वास्ते रोटियां बनाउन लई काफी आटा जमा हो गया। फिर इलाके दे लोकां ने उन्हां नूं नौकरियां दित्तियां। दोवें पुत्तर माहर कारीगरां दे सहायक बन गए। ओ अपना पैसा कमाण लग पे। एक औरत ने ती अते उसकी मां नूं सिलाई कढ़ाई दे पाठ देने शुरू कर दिते। जदों ओ सिख गए ओ भी कमाई करन लग गए। हुण भोजन की कोई समस्या नहीं सी, ओ रोजी रोटी कमाण लग पे। इस तरह पूरे 6 महीने बीत गए। वापस कोठी थे, गुरसिख ने कहा,
0: समा खत्म हो गया है, तुसी हुण जा सकदे हो। गुरु दा हाथ सदा तुहाडे सिर ते बणिया रहे।
1: मैं आजाद हाँ, मैं जा सकदा हाँ। मैं हुण अपने परिवार नूं देखना चाहुंदा हाँ।
2: ओ तुरंत उन्हां नूं देखण लई दौड़िया। ओ बहुत चिंतित सी कि किते ओ जिंदा भी हन या नहीं। जदों उसने उन्हां नूं देखिया तां उसदा दिल बाग बाग हो गया।
1: मेरे प्यारे, तुसी ठीक हो? मैं तुहाडे बारे बहुत चिंतित सी। रब दा धन्नवाद, तुसी ठीक हो।
2: ओ सिर्फ जिंदा ही नहीं सन, सेहतमंद भी सन। असल विच ओ पहलां नालों भी ज्यादा तंदरुस्त लगदे सन। उसदी पत्नी ने कहा,
4: जदों तुसी गवाच गए सी सारे गवांडियां ने सानू भोजन प्रदान करन लई योगदान पाया। फिर उन्हां ने सानू सिखलाई दित्ती तां जो असी कम कर सकिए। साडे सारियां दी कमाई नाल हुण असी बहुत सफल हां। साडे कोल पहलां नालों किते वध है। तुहाडे लई चिंता करन वाली कोई गल नहीं सी।
2: पत्नी दी इह गल सुन के ओह बहुत खुश होया।

0: सिखी दी ए निशानी। शब्द गुरु रामदास जी। व्याख्या जगदीप सिंह। चित्रकार प्रदीप सिंह।
1: सिमर सिंह, कृपा कौर, उठो उठो, की थानू वधिया नींद आई?
2: अखीरली चीज जेड़ी मनु याद है, मम्मी जी ने करो बेनती गोना शुरू ही किता सी ते मेनू नींद आ गई।
3: अजीत वीर जी, मेनू बड़ा चंगा लगता है जदो तुसी मेनू जगांदे हो।
1: आओ वेखिए, पहला कौन स्नान करके पाठ करन ली तैयार हुंदा है?
2: मैं जित जावांगा।
3: मम्मी जी, की मैं बबल पात ले सकती हां?
1: आओ पहला सिमरन करिए, फिर कृपा कौर तुसी आज जपजी साहिब करो, मैं जाप साहिब करांगा, सिमर सिंह तुवे प्रसाद सवाइये करेंगे।
2: मैनू बहुत भूख लगी है, आओ छेती छेती पाठ करिए ताकि मैं नाश्ता कर सका।
3: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ?
1: आओ अनंत साहिब करिए,
2: मैं उच्ची उच्ची गावांगा।
3: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया।
1: वाहेगुरु जी दा शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है। मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है।
2: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन, मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकदा हां।
3: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे कोल तुहाडे वर्गे वीर हन।
1: ओ वेको, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन, आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए।
2: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लग दिया हन।
3: एक दिन मैं भी पंच प्यारियां विच शामिल होवांगी।
1: इस शब्द विच एह सिख्या मिलदी है कि सानू वाहे गुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है।
2: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए।
3: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है।

0: बस एक औरत है। हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस यह कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहलां तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निघी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया, ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ।
4: ਉਦੋਂ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹਨ।
5: ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਲੁਕਿਓ ਨਾ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ।
3: ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ੀ ਦਰਾਂਗੀ।
5: ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਦਾ।
3: ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ?
5: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ।
1: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।